0: हला हे तिलियाली हम आला थले बेले ई खाती हाले हम आला तिलियाली खाती आला हे के तिलियाली ना बाले बेले सियलो असुते बाला खड़ा रवाली बाहे मेने ले थे मा खाती ला दे सोए नवत लदे असुते बाला यीशु फ्रांस के नाम में फले आओ
1: देखे मा खाती ला वे तेरे बे
0: ई हम आला के तिलियाली हम आ
1: तेरे बे दे दे नवा खिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा तिलिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी महर्षि ओबान सी उदाउ करन ने किने

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवेम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।